0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
2: हाँ जी यार।

0: का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
8: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05ত ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত
1: অনুষ্ঠান। নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে সর ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमा से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. The Prime Minister said the journey of Garib Kalyan has become a collective movement towards human empowerment and realizing the dream of a Vikasit Bharat. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, becoming the last state or union territory to do so. The National Health Authority and the Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the world's largest publicly funded health assurance scheme. The MOU will be signed in the presence of Chief Minister Shubhendu Adhikari and Union Health Minister JP Nadda in Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the three-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association CPA India region in Chandigarh this afternoon. Our correspondent reports legislators from across the country will attend the CPA conference being hosted by the Haryana Assembly. Lok Sabha Speaker Om Birla and other dignitaries will address the inaugural session during the three-day conference. Deliberations will be held on topics like the role of legislatures in the nation-building Vikasit Bharat 2047, artificial intelligence and making democratic institutions more effective. The National Testing Agency NTA has issued the city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of this month. Registered candidates can now check their allotted exam city by logging in to the official website using their application number and password. According to a public notice issued by the agency, the re-examination will be conducted in pen and paper mode from 2 p.m. to 5:15 p.m. across 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA clarified that the exam city intimation slip is not the admit card and is being issued solely to inform candidates about the city where their examination centre will be located. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. This red letter day marks a special moment in the cultural information and broadcasting history of the country where a voice was born that would echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates through 591 stations across the country, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcasts its programs in over 100 countries. The Enforcement Directorate is conducting searches at four locations across the Mizoram-Myanmar border, Tripura-Bangladesh border and West Bengal in a money laundering case linked to a drug trafficking network. The case is related to NCB seizure of over 49 kilograms of methamphetamine and 40 grams of heroin by the Agartala Zonal Unit. The investigation has revealed an organized cross-border syndicate sourcing methamphetamine from Myanmar, illegal earnings of more than 142 crore rupees linked to the drug trafficking network have been identified so far. In the Philippines, five people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. And with that, we end this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तराना।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत माला। 1:40 पर कार्यक्रम होगा वतन के तराने।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए तू झूठी मैं मक्कार फिल्म से। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुने सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाजों में, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए तुम्हारी सुल्लू फिल्म से गुरु रंधावा की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में संजू फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कयामत से कयामत तक फिल्म से यह गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिन ने।

हमारे अगले कार्यक्रम तराना की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल मंगलवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पनघत।

के 2 बजे से बारी बारी से सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर आएंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम तराना। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ, कभी ऐसा लगता है एल्बम से, लकी अली की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए आशा भोसले और अदनान शामी की आवाजों में मोहब्बत एल्बम से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए आपका अभिजीत सावंत एल्बम से, अभिजीत सावंत की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाजों में मेरे पिया एल्बम से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनिए रोमांटिका हर्षदीप एल्बम से, हर्षदीप की आवाज में।

आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

जान हो तो तालम की और जान हमें पर दो जी, तुम जान हो तो आलम की और जान हमें पर दोगी, तुम जान हो तो आलम की और जान हमें पर दोगी।

पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए, प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी।

भी होगी जो आज है अपने दिल में वो आज उधर भी होगी जो आज है अपने दिल में वो आज उधर भी होगी जो आज है अपने दिल में वो आज उधर भी होगी कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी में आग लगेगी।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का दूसरा गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, ताजमहल फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए कारवा फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में शराबी फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए दो बदन फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हमजोली फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में बॉम्बे का बाबू फिल्म से।

इस गीत के साथ गीतमाला कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर से, मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब पेश है कार्यक्रम वतन के तराने। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत उपकार फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से।

0: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। दिल चले फिल्म से आवाजें हैं कुमार सानू और आदित्य नारायण की।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शाबू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत नीति मोहन और विशाल ददलानी की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से।

0: The Israeli military has confirmed executing targeted airstrikes against a major industrial site in southwestern Iran. The military apparatus disclosed that the Israeli Air Force had recently attacked several targets at the petrochemical complex in Mashhad, located in the strategic energy-rich coastal belt of Iran.
1: The latest exchange marks a significant setback for efforts to preserve a ceasefire that had largely held since April. Iran has portrayed its missile launches as a measured response to Israeli military actions in Lebanon, while Israel says its operations are aimed at degrading Iranian military capabilities, preventing further attacks. Diplomatic efforts are now intensifying to prevent the conflict from expanding further. United States President Donald Trump has urged both sides to avoid additional escalation and return to negotiations. Regional mediators are also working to keep communication channels open. Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani held discussions with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi as a part of ongoing efforts to preserve dialogue between Tehran and Washington. The broader negotiations remain complicated by disagreements over maritime access through the Strait of Hormuz and wider regional security arrangements. As military activity continues across multiple fronts, concerns are growing that the latest exchange could trigger a broader regional crisis with implications for energy markets, aviation and international shipping. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Meanwhile, the Indian Embassy in Iran has advised internationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. In a social media post, the embassy also advised the Indian nationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, ushering the country into a special journey of culture, information and broadcasting to echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Akashvani brings forth a voice that echoes through generations, carrying the nation's stories, values and aspirations to listeners across the country. More from our correspondent.
2: Post-independence, KIR expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's external services division broadcast to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the news services division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country, in varied terrains, 24/7, in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
0: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bunting out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
5: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की

0: शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सकें।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।

0: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
0: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
4: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली

आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ प्रेम कहानी नहीं होती बल्कि जीवन और रिश्तों की सच्चाइयों को भी बहुत खूबसूरती से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ऐसी ही एक फिल्म है चलते चलते, जो वर्ष 2003 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक अजीज मिर्जा ने किया था और मुख्य भूमिकाओं में थे शाहरुख खान तथा रानी मुखर्जी।

फिल्म में राज माथुर एक इंजीनियर है, लेकिन उसने अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की है। वह बेहद खुशमिजाज, बेफिक्र और थोड़ा अस्त व्यस्त स्वभाव का इंसान है। समय की पाबंदी उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर प्रिया चोपड़ा एक सफल फैशन डिजाइनर है। वो एक संपन्न परिवार से संबंध रखती है और अपने जीवन की पूरी योजना और अनुशासन के साथ जीती है।

लेकिन कहानी में मोर आता है। प्रिया पहले से ही समीर नामक युवक से सगाई कर चुकी होती है। राज ये जानकर परेशान हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो प्रिया के पीछे पीछे ग्रीस तक पहुंच जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है।

राज अपने व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को लेकर संघर्ष कर रहा होता है। वह स्वयं को प्रिया के परिवार के स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता है और इसी दबाव में धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाता है। प्रिया अपने पति की परेशानियों को देखकर चिंतित हो जाती है। वह मदद करने के उद्देश्य से अपने पूर्व मंगेतर समीर से आर्थिक सहायता ले लेती है, लेकिन जब राज को इस बात का पता चलता है तो वह गलत समझ बैठता है।

फिल्म का अंत बहुत सुंदर और भावनात्मक है। दोनों फिर से हल्की फुल्की नोकझोंक करते हैं और दर्शकों को यह संदेश देते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल मुस्कान नहीं बल्कि साथ निभाना भी है।

इस गीत के साथ चैनी का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों के लिए भी समाप्त होता है आज का प्रसारण। कल 12:10 पर आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूनम बरुआ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: बेहतरीन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार। मस्तिष्क ट्यूमर एक गंभीर समस्या है जो न केवल रोगियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी एक चुनौती होती है। हमें इसके बारे में जागरूकता फैलाने और उपलब्ध उपचार विकल्पों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय को। बहुत बहुत स्वागत है आज के रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का और साथ ही साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: थैंक यू शालिनी जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। और जैसा हमने बताया आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर। इस बारे में हम और जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जानकारी आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसके लिए सही जो प्लेटफॉर्म है वो है रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में प्रतिदिन हम एक ऐसा विषय एक ऐसे विशेषज्ञ के साथ यहां उपस्थित होते हैं जिससे आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए और साथ ही साथ आपकी जानकारी में भी वृद्धि हो जाए। तो पहले आरंभ करेंगे इस कार्यक्रम का एक खूबसूरत से गीत के साथ और फिर लौट कर आएंगे आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं डॉक्टर साहब हम सबके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर से संबंधित। एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और फिर हम लौटेंगे और बात करेंगे डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय से।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हमारा विषय है ब्रेन ट्यूमर। तो पहले जानते हैं डॉक्टर साहब से ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। डॉक्टर राहुल वाचने हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत भय जुड़ा हुआ है इस शब्द के साथ। पहली बार ट्यूमर, कहीं का भी ट्यूमर हो, और फिर जब ब्रेन ट्यूमर की बात होती है तो काफी मन में एक संशय भी होता है, भय भी होता है। क्या है एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर?
1: शालिनी जी, ट्यूमर जैसा कि आपने कहा, एक अपने आप में भयभीत करने वाला शब्द है, ऊपर से ब्रेन ट्यूमर तो और है। बट मैं लोगों को यह निश्चिंत करना चाहूंगा कि इससे भय में होने का कोई मतलब वो नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है।
0: अच्छा।
1: ये एक लाइलाज बीमारी नहीं होती है। ऐसे बहुत से ट्यूमर्स होते हैं जिसका आप इलाज कराएंगे और आप एज गुड एज नॉर्मल लाइफ जियेंगे, जैसे कि आप पहले जिया करते थे। तो डरना नहीं है और इसका इलाज कराना, ये मेरी सभी श्रोताओं से जो भी सुन रहे हैं इसको, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इलाज कराइए, इसको लाइलाज समझ के अपना इलाज बंद मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए और इसका इलाज कराइए। ब्रेन ट्यूमर कुछ नहीं, जैसे आप और भी ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन में सेल्स होते हैं, उसके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उसका जब मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक ट्यूमर का वो रूप ले लेता है। और फिर इसका हम अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग पद्धति से हम इसका इलाज करते हैं और इलाज संभव होता है इनका।
0: जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल कार्यक्रम के आरंभ में आशावादी बिल्कुल रखी है कि ये चुनौती जरूर हो सकती है कि ब्रेन ट्यूमर है, पर ये ऐसा नहीं है, लाइलाज नहीं है,
1: नहीं।
0: और जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर आयोजित किया है कि आपके माध्यम से हमारे वो श्रोता जो आपकी बात सुन रहे हैं वो समझें कि डरना नहीं है, हमें बस इस चीज को समझना है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो भी हम बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, पर पहले हम ये समझ लें कि क्या, जैसे आपने कहा कुछ ऐसे प्रकार हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं?
1: जी, ब्रेन ट्यूमर्स का अगर हम क्लासिफाई करने जाएंगे तो वो तो एक अपने आप में पूरा बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बट मोटा मोटा देखेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स में जो ब्रेन में आपके सेल्स होते हैं, डिफरेंट जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, इनके सेल्स से जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जो कि कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक तरह का ट्यूमर होता है। कुछ ट्यूमर्स वो होते हैं ब्रेन में जो शरीर में कहीं और ट्यूमर होता है जो कि फैल के ब्रेन में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो ये दो तरीके के मोटा मोटा ट्यूमर्स होते हैं। तो कुछ ट्यूमर्स इसमें से ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेनिन्जियोमास होते हैं, जिनको अगर हम पूरा तरीके निकाल देते हैं तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और अपनी जिंदगी जैसे बगैर ट्यूमर के लोग जीते हैं वो वैसे ही जीता है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ट्यूमर का इलाज कराइए, उससे डरिए मत, इलाज संभव है।
0: बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो आप सबके दिमाग में भी घूम रहे होंगे कि ये क्यों ना पूछ लिया जाए डॉक्टर साहब से, तो बिल्कुल स्वागत है। और हमारे बहुत सारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर भी हमारे साथ, हमारे कॉलर्स हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: हेलो, नमस्ते शालिनी जी।
0: जी नमस्ते मिसेस बेदी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: वैसे आपके प्रोग्राम में कि हम चिपके ही रहते हैं।
0: ये आप ही के शब्द हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप चिपकी रहती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें।
2: मैं अपनी योगा क्लास का टाइम बदल रही हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम मिस हो जाता
0: है। हाँ, पर योगा क्लास रखिए जरूर, क्योंकि बहुत
2: नहीं,
0: सारे
2: नहीं,
0: लोगों
2: नहीं,
0: को आप लाभान्वित कर रही हैं।
2: 25 साल है मेरे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए आज का जो विषय है।
2: बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक तो मैं जानना चाहती हूँ कुछ वार्निंग सिग्नल आते हैं हमें, दूसरी बात कि मेरी नीस है उसको कई बार सिर में बहुत दर्द उठता है, वो माइग्रेन भी नहीं निकला, उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि पता लगे कि क्यों दर्द उठती है?
1: देखिए, सर दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें से ट्यूमर भी एक कारण होता है। बट हर ट्यूमर सर दर्द, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर है।
0: चीज़, चीज़,
1: और माइग्रेन जहां तक है कि जी, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं माइग्रेन में, जनरली वो टेस्ट सब नॉर्मल ही आते हैं। माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि डॉक्टर बनाता है, और सर दर्द का कारण क्या है उसके लिए तो आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि क्या क्या आप टेस्ट करा सकते हैं और इसका कैसे इलाज संभव है।
2: और डॉक्टर साहब, कोई वार्निंग सिग्नल होते हैं?
1: वार्निंग सिग्नल तो देखिए, ऐसे तो नहीं होते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये है तो आपको ट्यूमर हो सकता है। बट ये है कि हाँ, ट्यूमर के कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं बट आपके ऐसी लोकेशन पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जहाँ बोलने का सेंटर होता है, जहाँ आपको चीजों को समझने का सेंटर होता है, तो वो छोटा सा ट्यूमर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं और आपको मेजर सिम्टम नहीं आएंगे,

0: तो फिर आप डॉक्टर, आपको लगता है मेरे ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, या ठीक है आदमी इग्नोर कर देता है, बट बाद में जब आप स्कैन कराते हो पता चलता है कि आपके ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लोकेशन पे है उस पे आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं।
1: थैंक यू सो मच,
2: बहुत धन्यवाद मिसेस बेदी कॉल करने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए जो हम सबके दिमाग में थे। डॉक्टर साहब आपने बोला बहुत एविडेंट सिम्टम्स नहीं है, तो किस तरह से, जैसे मिसेस बेदी ने भी जानना चाहे, कब वो सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि आए दिन होती है और बहुत कैजुअली भी हम उसको ले लेते हैं, व्हेन इट बिकम्स अ वार्निंग साइन।
0: देखिए सर दर्द के 90% केसेस में तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं होती जिसके कारण सर दर्द होता है। अमूमन टेंशन हेडेक्स होते हैं, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, आपको माइग्रेन होता है आपको, ये एक अपने आप में बीमारियां जरूर है, बट ये ट्यूमर के कारण जनरली इस टाइप के हेडेक्स नहीं होते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत लंबा सर दर्द रहता है, सर दर्द के साथ कई बार उल्टियां होती हैं, इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि उल्टियों के साथ आपको सर दर्द में आराम पड़ेगा, और भी बहुत एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिसके अपन बोलते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है, दिमाग का प्रेशर जब बढ़ता है ट्यूमर के कारण, तो उसके कारण भी और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर वो सारी चीजें अगर आप में डेवलप हो रही हैं तो आपको सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं आपके ब्रेन में कुछ है तो नहीं।
2: जी जी, एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
3: पहले तो शालिनी मैम को बेहद शालीनता से ही नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार,
3: और डॉक्टर साहब को भी लगे हाथों नमस्कार।
0: धन्यवाद जी, नमस्कार आपको भी।
3: सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से।
2: जी राजेंद्र जी, समस्या क्या है आप प्रश्न पूछ लीजिए।
3: पहला सवाल तो है कि अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए या मालूम हो जाए ट्यूमर है, तो अगर आपकी पास आए तो उसका इलाज आप मेडिसिन से ही कर लेते हैं या सर्जरी ही करनी पड़ती है? पहला सवाल तो मेरा ये है, और दूसरा सवाल ये है कि मुझे अतीत में सिर में जो है सिगर जिला में बॉल लगी और मेरी बाएं कान के नीचे गिल्टी भी है, तो ये कुछ अगर अतीत में सिर में चोटें लगी हो तो क्या उससे भी प्रेजेंट एट प्रेजेंट जो है सिर में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं? स्लीप एपनिया और स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो मेरे सिर में दर्द तो खैर नहीं है सर, मुझे मानसिक थकावट जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे लोग आधा एक घंटा काम करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, ठंडा खाने पीते हैं।
2: जी जी जी,
3: तो मेरे को शोर शराबा जो है ना और हो हल्ला वो बहुत जो है ये प्रदूषण की जो होते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होते, मुझे गुस्सा जो है जल्दी आ जाता, दिमाग मेरा गर्म जल्दी।
2: जी जी राजेंद्र जी, हमने सब आपके प्रश्न नोट कर लिए हैं, एक एक करके डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन या सर्जरी ही इलाज है ये जानना सबसे पहला इनका ये प्रश्न था राजेंद्र जी का, कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन भी था ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करने में।
0: ट्यूमर्स के लिए मैं जहां तक आपको बात करूंगा कि एसएच मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है, मैं जो आपको बोलूंगा कि जो आप मेडिसिन खाइए और आपका ट्यूमर चला जाएगा, बट हाँ मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, ये कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत जब साइज में छोटा होता है तो वो रेडिएशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे ट्यूमर आपका जा सकता है, बट काफी मेजोरिटी ऑफ जो ट्यूमर जो होते हैं उसमें सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है।
2: जी और मेडिसिन कोई नहीं है?
0: मेडिसिन बेसिकली सपोर्टिव मेडिसिन होती है कि अगर आपको ट्यूमर के कारण मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो आप उसके लिए दवाई देते हैं, या ट्यूमर के कारण आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है या इसमें सूजन आ रही है तो आप उसकी दवाई देते हैं,
2: सिम्टोमेटिक ही होता
0: है। बट कुछ मेडिसिन आजकल ये आई है कि मतलब रिकरेंस होता है ट्यूमर का, मतलब ट्यूमर को आपने निकाल दिया दोबारा ना हो इसको डिले करने के लिए कुछ आजकल मेडिसिन निश्चित तौर से आती है, बट एज सच मेडिकेशन ऐसे कोई नहीं है कि मैं आपको ये दे दूं कि आपको ये ट्यूमर है तो आपको ट्यूमर चला जाएगा।
2: जी जी, और ये डॉक्टर ही बता पाएगा कि क्या करना है,
0: क्या इलाज है, वो डॉक्टर से ही संपर्क करें।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन्होंने एक प्रश्न किया था कि कभी बचपन में या लंबे समय पहले चोट लग गई हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कारण बन जाए?
0: नहीं, अमूमन ये ऐसा नहीं होता है कि चोट का कारण से आपको ट्यूमर हो, ऐसा संभव नहीं है।
2: तो क्या कारण होता है फिर, एक्चुअल रीजन क्या है?
0: ट्यूमर्स के आज तक देखिए कारण तो स्पेसिफिकली पता नहीं चल पाए हैं, बट कुछ मैं बोलूंगा कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि जिन पेशेंट में देखा गया है कि जिनको ट्यूमर हुआ है, जैसे आप रेडिएशन एक्सपोजर आपका अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसमें उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनको ट्यूमर डेवलप हो। दूसरा जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्टर, कुछ ट्यूमर्स होते हैं कि जेनेटिक होते हैं कि आपके पुश्तों में किसी को ट्यूमर हो, जीन्स में कुछ खराबी हो, इस कारण आपको ट्यूमर हो सकता है। तीसरा होता है जो कि आपके शरीर में कहीं और ट्यूमर हो वो फैल के आपके दिमाग में आ जाए, तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होते हैं, बट एज सच स्पेसिफिक क्या कारण है ये अभी तक नहीं पता चले।
2: जी, और कान के नीचे अगर गिल्टी है जैसे उन्होंने कहा है तो उसका भी चेकअप कराना जरूरी है?
0: जी बिल्कुल, अगर आपको एक लॉन्ग स्टैंडिंग

0: आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सूजन है कान के नीचे, हड्डी में कुछ है, तो एक बार डॉक्टर को निश्चय दिखाइए,
1: दिखा लीजिए। और थकावट और स्लीप डिसऑर्डर्स ये भी रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं क्या?
0: देखिए, अगर कुछ हिस्से के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें नो डाउट ये सब चीजें होती है, बट जैसे इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, इनको थोड़ा सा है, इनको एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करिए और ठीक हो जाएगा इनका।
1: तो चलिए, सारे प्रश्न जितने आपने अभी पूछे थे हमने ले लिए राजेंद्र जी, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गए। हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी,
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को और गोविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
1: जी चट्ठा जी, आप अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं।
2: डॉक्टर राहुल को भी मेरा सादर प्रणाम।
0: जी नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है
0: जी,
2: उनको ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा हो सकता है? नंबर टू, अगर किसी को डिटेक्ट हो जाए तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? नंबर तीन, कि ये ब्रेन ट्यूमर कभी कैंसर का रूप भी ले सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद।
0: देखिए, ब्लड प्रेशर से ट्यूमर का तो ऐसा कोई सीधा लेना देना नहीं है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि ब्लड प्रेशर से दूसरी बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो रहा है तो ब्रेन हेमरेज का रिस्क जरूर बढ़ जाता है। तो मेरी यही सलाह है कि ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में रखिए, डॉक्टर को दिखाइए और जो भी वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करिए। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं ब्रेन में कि जो आपको आप निकाल देते हैं बट वो पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, वो उसमें रिकरेंस होता ही होता है, तो उसका कुछ ऐसा इलाज नहीं होता। आप लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा बट क्योर नहीं होता उसमें। कुछ ट्यूमर निश्चय ऐसे भी होते हैं ब्रेन में आपके।
1: और ट्यूमर जैसे कैंसर की बात करते हैं तो ट्यूमर भी मैलिग्नेंट नॉन मैलिग्नेंट कैटेगरीज में होते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। ब्रेन में भी ऐसे ही होता है कि कुछ ट्यूमर्स होते हैं कि जो कि बिनाइन होते हैं, आपने इसको एक बार निकाल दिया, आप नॉर्मल हो गए, आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगे अपनी। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें आप सर्जरी भी करा लेते हैं, रेडिएशन भी करा लेते हैं, आपकी लाइफ स्पैन तो थोड़ा सा बढ़ जाता है बट वो रिकरेंस होता ही है उन ट्यूमर्स में। तो या फिर जो आपके शरीर में कहीं और से ट्यूमर जो आते हैं वो थोड़ा सा खराब ग्रेड में समझा जाता है, उसका भी इलाज होता है बट वो पूरी तरीके से क्योर संभव नहीं होता उनका।
1: तो ये आप बता रहे हैं कि रिकरेंस काफी होता है, तो
0: डिपेंडिंग अपॉन ट्यूमर का क्लास क्या है।
1: अच्छा,
0: उसपे कुछ ट्यूमर्स में रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ ट्यूमर्स में निश्चित तौर पर रिकरेंस होता है। कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं कि डिपेंड कि आपको किस लोकेशन पे ट्यूमर है, आप अगर उसको हम पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें रिकरेंस का चांस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा निकालने जाएंगे तो क्षति ज्यादा हो जाएगी आपको, उसमें थोड़ा रिकरेंस का चांस निश्चय होता है।
1: और डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सर्जरी ज्यादातर की जाती है क्योंकि आप उसको रिमूव करते हैं और फिर टेस्ट करते होंगे कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, कितना सक्सेस रेट है? बिकॉज पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस।
0: देखिए, परसेंटेज में क्लासिफाई करना तो मुश्किल है बट मैं आपको ये बोलूंगा कि सर्जरी एज सच में अगर आप जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि 90-95% जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी सक्सेसफुल होती है, क्योर नहीं होता, हो सकता है ट्यूमर का आपका, बट ऐसा नहीं हुआ कि आपने सर्जरी कराई और आपको वेंटिलेटर पे चले गए या आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं होता। तो इलाज जरूर कराएं, और किस टाइप का ट्यूमर है इस पे आपका इलाज और इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको कितना मतलब सही रहेंगे आप।
1: जी जी बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य यही है कि आज जो भी प्रश्न ब्रेन ट्यूमर से संबंधित आप जानना चाहें, जिनका समाधान आप जानना चाहें, वो इस कार्यक्रम से आपको मिल जाए। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, आप रेडियो डॉक्टर में हैं एफएम रेनबो पर। हेलो
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार
3: सर। को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
3: सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, किरोड़ी लोनी जिला गाजी।
1: जी यामीन भाई, प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
3: मैं सर से ये जानना चाह रहा था, जैसे कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है सर के अंदर, तो उसको निकलवा देते हैं, जैसे ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, उसके बाद शरीर में क्या चेंजिंग आ जाती है? जैसे कि आवाज भी चली जाती है, हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि हमारे रिलेटिव को ऐसा हो चुका है?
0: देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर की लोकेशन क्या है। अगर आपका ट्यूमर उस हिस्से के पास में है जिसे आपके बोलने का कंट्रोल होता है आपके दिमाग में, या ट्यूमर उस हिस्से में है जिसमें आपका हाथ पैर का कंट्रोल होता है, तो निश्चय तौर पे कभी ऐसा होता है कि आप सर्जरी कराते हैं तो ये सब चीजों में आपको आज ऐसा बता रहे कि आवाज चली जाना, हाथ पैर में कंट्रोल आना। बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस हो गई है कि इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं कि आप अगर सर्जरी में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीजों की संभावना होने की मैं जीरो तो नहीं बोलूंगा बट काफी कम हो जाती है। आप पहले से पता चलता है कि आपका बोलने का सेंटर है, ट्यूमर से कितना दूर है, तो आपको कितने दूर तक जाना है, ये सब आप सर्जरी से पहले प्लान कर सकते हो आप।
1: और अगर सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो क्या ये जो चीजें बॉडी में इफेक्ट कर चुकी हैं ये वापस ठीक हो जाती हैं?
0: कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैडम ठीक हो जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार खराब हो गई तो फिर वो खराब रहेगी,
1: जो कोई नर्व्स रिलेटेड चीजें हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और फिर हम लौटेंगे और बात

0: जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आइए बात करते हैं हमारे एक और कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार,
1: डॉक्टर सर को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: मेघा राणा।
0: मेघा जी, जी बताएं क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से।
1: सवाल ये है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको राइट साइड में सर में दर्द होता है, उसी के साथ साथ राइट थाई में भी होता है।
0: राइट थाई में और राइट साइड ऑफ द हेड होता है जी।
1: पहला तो ये, दूसरा ये कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी

0: गया तो आंखों पे उसका कोई असर पड़ता है आई शाइड पे।
1: अच्छा ठीक है, आपके प्रश्न हम डॉक्टर साहब ने सुन लिए हैं जी।
2: देखिए ब्रेन ट्यूमर अमूमन मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि दो तरीके, अगर मान लो आंखों की नस का ट्यूमर है ठीक है ना, तब तो आपकी आंखों पे निश्चय तौर पे असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी ये ट्यूमर अगर दिमाग में कहीं पे भी है तो वो आपका जो एक दिमाग होता है, दिमाग में तीन चीजें होती है, एक खून होता है, एक दिमाग होता है और एक दिमाग में पानी होता है जिसको हम CSF बोलते हैं। तो एक ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे कि अगर आपका दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है तो दिमाग अपने जगह से हिल जाता है, सरक जाता है, जिसको हम हर्निएशन बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई ट्यूमर हुआ तो वो उसने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया तो आपका जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो सबसे जो ज्यादा इफेक्ट होती है वो आपकी देखने की नस इफेक्ट होती है, तो उसमें भी आपकी रोशनी जा सकती है। तो या तो रोशनी के नस का ट्यूमर हो या ब्रेन का प्रेशर बढ़े, दोनों चीजों में आपका इफेक्ट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर में आपका आंखों की रोशनी में इफेक्ट आए। डॉक्टर को ही दिखा के वही डायग्नोस कर पाएगा कि आपको क्या हो सकता है
1: जी। और बहुत सारी आपकी जो जिज्ञासा है वो उस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे, तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए। 4 बजे तक इस कार्यक्रम को हम आप सुन सकेंगे रेडियो डॉक्टर को जैसे प्रतिदिन सुनते हैं, और एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली हमारे साथ स्टूडियो में। हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौटेंगे। आप हमें इसी तरह से फोन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, उसको भी हम इस ब्रेक के बाद जरूर शामिल करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर पर बात हो रही है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफी बातें की, हमारे काफी सारे श्रोता कॉलर्स हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर अपनी अपनी समस्या के साथ, तो बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं, तो मैं एक एक करके मैसेज भी लेना चाहूंगी। ये पहला जो मैसेज हमको लिखकर भेजा है, ये लिखा है रिया ने हरिद्वार से, और लिख रहे हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड क्या कुछ खाने पीने से भी हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए। जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि कभी कभी कहा जाता है कि कैबेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ट्यूमर हो सकता है, और अगर ये सच है तो हम कैसे इसको अवॉइड करें और कैसे डिटेक्ट करें, क्या ये सच है?
2: कॉजेस तो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, दोबारा बताऊंगा कि ऐसे कॉजेस तो ब्रेन ट्यूमर के अभी तक नहीं पता चले हैं, बट कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे रेडिएशन एक्सपोजर आप में ज्यादा हो, जेनेटिक अगर आप मतलब कुछ ट्यूमर्स होते हैं तो जिनमें जेनेटिक बहुत पेरेंट्स में ट्यूमर है या जेनेटिक आई मीन कुछ आपका डिरेंजमेंट हो जाता है, इस चक्कर में ट्यूमर हो सकते हैं, बाकी कॉजेज ऐसे नहीं है। जहां तक कैबेज की बात है तो मेरी जानकारी में तो ऐसे नहीं है, बट हाँ जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको भी उसमें से भी माना गया है कि कुछ कुछ जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो ट्यूमर के कारण हो सकते हैं।
1: जी, और विक्रम सिंह हमसे पूछ रहे हैं जम्मू से, रेडियो परिवार को नमस्कार, मैं ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करा चुका हूं 2017 में, और पहले मुझे एक बार एक साल में एक ही सीजर आता था, अब 3-4 बार सीजर आता है, दवाई मैं खा रहा हूं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? दवाई तो इन्होंने लिखी है पर दवाई का हम नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, पर इनको नंबर ऑफ सीजर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है।
2: देखिए, जो भी आपको सीजर्स आ रहे हैं पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये जो ऑपरेशन है ये किस ट्यूमर के लिए हुआ था, और दूसरा ये है कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था रिकरेंस का चांसेस होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका आपको स्कैन कराना पड़ सकता है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया था, दोबारा से स्कैन कराइए, अगर कुछ रिकरेंस होगा तो उसका इलाज होगा, और नहीं तो कई बार ऐसा होता है तो आप दवाइयां खा सकते हैं, इसकी दवाइयां लंबी चलती हैं सीजर्स की, तो उसको खाइए और सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इनको दोबारा से जाना चाहिए चेकअप कराने, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक बार ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू हो गया या जो भी सर्जरी है हो गई, तो कितना फॉलो अप टाइम रहता है, कितनी बार जाना पड़ता है उसके बाद?
2: नहीं, फॉलो अप तो आपको फिर मैं कहूंगा कि डिपेंडिंग अपॉन किस ट्यूमर की आपकी सर्जरी हुई थी, वो आपको फॉलो अप कब आना है और कितने दिनों बाद आना है, ये जो आपका रिस्पेक्टिव डॉक्टर है वही बेहतर बता पाएंगे कि हर ट्यूमर का अपना फॉलो अप होता है। या आप में कुछ, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कुछ भी अबनॉर्मल महसूस होता है जो आपके नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा हट के है, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट दोबारा जरूर करिए आप।
1: जी, और श्याम मित्तल जानना चाह रहे हैं, रोहिणी में रहते हैं, 74 इयर्स एज है, कि डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए अलग अलग प्रकार के सीजर्स के बीच में, जैसे एपिलेप्सी का है या लो शुगर के कारण हो गया है कि ट्यूमर के कारण है?
2: सीजर का कारण क्या हो सकता है यह तो आपको एक डॉक्टर ही बेहतर बताएगा, बट सीजर्स हाँ बहुत तरह के सीजर्स होते हैं भाई, ट्यूमर के कारण भी आपको सीजर आ सकते हैं और कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज होती है उसके कारण भी सीजर आ सकते हैं, बट कारण क्या है ये तो आप डिस्टिंग

0: आपसे बेहतर मैं आपको बोलूंगा डॉक्टर को दिखाइए, वही कारण पकड़ेगा कि आपको सीजर्स क्यों आ रहे हैं। कुछ में ट्यूमर हो सकता है, कुछ में एपिलेप्सी इसको अपन बोलते हैं, सीजर वैसे ही आते हैं, वो डॉक्टर का डायग्नोसिस है, आप उनको दिखाइए जाके।
1: जी। और एक हमारे साथ इस समय एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो।
1: हेलो जी।
2: हाँ नमस्कार सर।
1: जी
2: आपको भी
0: नमस्कार।
1: जी नमस्कार। हाँ जी
2: सर, क्वेश्चन है कि 2014 से ये ट्राइजिमिनल न्यूरोलॉजिया है ये सिर में, अब ये दवाई इतनी हार्ड दे रहे हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं।
1: जी।
0: देखिए ट्राइजेमिन न्यूरोलॉजिया का जो पहला ट्रीटमेंट तो दवाइयों से ज्यादा कंट्रोल हो, बट अगर नहीं होता है तो बहुत सारे इलाज होते हैं।
2: दवाई नहीं हो रही है सर।
0: तो जैसे आपको बताया रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है, वह उससे भी काफी मन कंट्रोल हो सकता है। आपकी जो नस होती है जो ट्राइजेमिन नर्व, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे भी दर्द में आराम पड़ सकता है, और किसी किसी केस में आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है आपको।
1: जी
2: तो वो 78 एज है, 78 ईयर तो बोले इस एज में नहीं करते हैं।
0: तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बार ट्राई करिए।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बता दिया।
2: सेफ है कि
0: देखिए आज की डेट में ऐसा तो कोई भी चिकित्सा नहीं है जिसको आप बोलोगे 100% सेफ होगा, बट हाँ रिस्क कम होता है इसमें।
1: चलिए डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, आपको जैसा गाइड कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप वैसा फॉलो करें। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और आपके जो प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं उनको भी शामिल करेंगे, आपके फोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे। तो आप इसी तरह से रेडियो रॉक के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन FM रेनबो पर।

0: वेलकम बैक, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और हमारे श्रोता हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, नाइस टॉपिक, हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन और बहुत सारा जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रही है। तो कोशिश यही होती है प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाएं कि आपको भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जो मिलती हैं यहां से वो कुछ ऐसी चीज मिले जो आपको नहीं पता हो, कोशिश यही होती है। और किरण सोनी हमको लिख रही है नागौर राजस्थान से डॉक्टर साहब कि मेरी उम्र 40 वर्ष है और कान में पस आता था जिससे कि पर्दा और पीछे की हड्डी गल रही थी, इसके कारण मेरे ब्रेन में ट्यूमर निकाला गया और कान का ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन था और ब्रेन में ट्यूमर भी था। 4 साल हो गए हैं इस बात को। मेरा सवाल है कि उस ऑपरेशन से मेमोरी पर इफेक्ट हुआ है ऐसा लगता है, तो ये मेरा वहम है कि सच में मेमोरी में इफेक्ट होता है इस तरह के ऑपरेशंस में?
1: देखिए, जहां तक मुझे इनकी बातें सुन के लग रहा है ट्यूमर नहीं होगा, एब्सेस होगा इनको, मतलब मवाद जमा हो गया कान का मवाद जो कि दिमाग में फैल गया होगा। डिपेंड करता है कि आपका ये मवाद दिमाग के किस हिस्से में था। लेफ्ट साइड में जनरली आपका देखा गया है कि आपका जो एक दिमाग का हिस्सा, इसको हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, वहां पे मेमोरी का भी सेंटर होता है आपका, अगर वो जो कि कान के पास होता है, अगर उसमें आपको मवाद था तो चांसेस है कि आपको मेमोरी पे भी इफेक्ट हो सकता आया हो उससे।
0: और ये प्रश्न हमें भेजा है परिधि ने दिल्ली से कि अगर किसी को ट्यूमर हो तो कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चों को और आगे आने वाली जनरेशन को भी ट्यूमर हो, और अगर दोनों पेरेंट्स को ट्यूमर है तो ये चांसेस कितने बढ़ जाते हैं और क्या इसका कोई बचाव है, क्योंकि आपने बताया जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल।
1: यस, देखिए हर ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक नहीं होता, ये आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेरेंट को ये ब्रेन ट्यूमर है तो बच्चों को होगा ही होगा। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक का रोल देखा गया है, बट इसको क्लासिफाई करना, और कुछ में परसेंटेज ज्यादा होता है ट्रांसफर का, कुछ में बहुत कम ही होता है। तो आप पर्टिकुलर एक ट्यूमर की बात करेंगे हम तो वो डिफरेंट होगा, बट इन जनरलाइज देंगे तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स को ट्यूमर है तो बच्चों को भी ट्यूमर हो।
0: जी, कारण लोग जानना चाह रहे हैं, वैसे आपने बताया कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है लेकिन सिडेंट्री लाइफस्टाइल कारण हो सकता है क्या, ये जानना चाहते हैं। अमित विश्वकर्मा देहरादून से लिख रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल हूं, बहुत देर बैठे बैठे ऑन स्क्रीन काम करना पड़ता है, तो एक मन में एक जिज्ञासा है जानने की।
1: अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्रेन के साथ साथ जो दूसरा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, उस पर इफेक्ट आ सकता है आपको।
0: अच्छा,
1: तो जितना ब्रेन जरूरत है उतना दिल का भी ख्याल रखिए, दिमाग के साथ
0: कहीं ना कहीं नुकसान तो आएगा
1: जी,
0: ना? तो इसके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं कि बीच में ब्रेक्स लिए जाएं?
1: ब्रेक्स लीजिए, एक्टिविटीज रखिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आपका दिल दौड़ेगा तो आप भी दौड़ेंगे
0: जी। देवेंद्र इंगती हमें लिख रहे हैं कार्बी आंगलोंग से, डॉक्टर साहब और शालिनी मैम को नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि ब्रेन के अलावा कहां कहां ट्यूमर्स हो सकते हैं?
1: देखिए, अगर हम देखेंगे तो ब्रेन के अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा है आपको उसमें ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर कुछ नहीं होता है कि आपके सेल्स की, बॉडी के सेल्स होते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ होना चालू हो जाती है जो कि रुकती नहीं है, तो ब्रेन के अलावा कहीं भी ट्यूमर हो सकता है और कहीं का भी ट्यूमर फैल के ब्रेन में जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा मेरी है कि बहुत सारे एडवांसमेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, खास तौर पर जब कोई बीमारी होती है, और ये एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर भी निश्चित तौर पर बहुत एडवांसमेंट हो रहे होंगे, और मैंने कहीं पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि आपको टोटली एनेस्थीसिया देकर कंप्लीट एनेस्थीसिया में ही ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाए, कितना सच है?
1: बहुत अच्छा सवाल किया शालिनी जी आपने। आजकल हम एक सर्जरी बोलते हैं इसको, आजकल तो नहीं, काफी टाइम से प्रैक्टिस हो रही है, अवेक क्रैनियोटॉमी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से होश में रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ट्यूमर है, जैसे एक सज्जन ने प्रश्न भी किया था जो कि बोलने के हिस्से के बिल्कुल पास पास में ट्यूमर है, या आपका जहां से हाथ पैर कंट्रोल होते हैं उसके पास में ट्यूमर है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट बेहोश नहीं रहता है, हम पेशेंट होश में रहता है, हम उसकी सर्जरीज करते हैं, और जैसे ही हम उस ट्यूमर के हम निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे आप बोल के दिखाइए या आप हाथ हिला के दिखाइए, तो अगर थोड़ी सी भी एक्टिविटी में हमें कमी लगती है तो हमको समझ जाते हैं कि हम एकदम उस सेंटर के पास में है, तो हम उसको आगे नहीं जाना है।
0: अच्छा।
1: तो ये एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है, और इसके साथ साथ आजकल तो रेडियोलॉजी में, इमेजिंग में इतने एडवांसमेंट आ गए हैं कि आप पहले सब लोकलाइज कर सकते हो कि आपके सेंटर्स कहाँ पे हैं और वो ट्यूमर से कितनी दूर है, तो रोबोट्स आजकल डेवलप हो रहे हैं सर्जरीज के लिए एंड दे आर वेरी गुड।
0: तो सर्जरी से पहले जो आप टेस्ट कराते हैं वो कौन से, MRIs होते हैं?
1: MRIs कराते हैं, MRI के भी अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि हमको ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं, कई बार CT स्कैन की जरूरत पड़ जाती है, तो सबको हम देख के समझ के फिर हम प्लान करते हैं कि किस टाइप से ऑपरेशन करना है।
0: जी, और ये प्रश्न हमें भेजा है गुलाम रब्बानी जी ने पटना से कि मेरे नेक में 8 साल से दर्द है, क्या इसका कारण हो सकता है और इसका इलाज क्या है? तो मुझे लगता है इन्होंने कहीं तो टेस्ट कराए होंगे, कुछ लिखा नहीं है, आप क्या कहेंगे?
1: नेक के कारण तो अमूमन सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा मोबाइल होता है, जो आप झुक के मोबाइल देखते रहते हैं उसको कम करिएगा। और अगर नेक का दर्द आपके हाथों में जा रहा है तो सर्वाइकल हो सकता है, तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो बेहतर बता पाएंगे आपको किस कारण से दर्द है।
0: सैयद दानिश मोहम्मद शाकिर फ्रॉम पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से हमारे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और लिख रहे हैं कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, नाइस टॉपिक, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सैयद दानिश और मोहम्मद शाकिर, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें कुछ श्रोता है जो हमें फोटोज और वीडियोज और मेडिकेशन की पूरी लिस्ट भेज रहे हैं, तो हम वो चीजें यहां शामिल नहीं कर सकते हैं, सॉरी, सिर्फ आप समस्या शॉर्ट में हमें लिखेंगे तभी हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं शामिल कर पाएंगे। और ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है तरुण कुमार जी ने अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को ओवरी में गांठ थी जिसको वैक्यूम से निकाल दिया गया है, गांठ में कैंसर की शिकायत बताई गई, और किस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने शरीर में कैंसर 4 स्टेप से कैंसर हो चुका है, यदि हम गांठ नहीं निकलवाते तो कैंसर नहीं बढ़ता, मतलब काफी कंफ्यूज सा इनका मुझे समझ नहीं आया, पर ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है प्रश्न, पर आप कुछ कहना चाहें, इन्हें बताना चाहें?
1: देखिए ऐसा नहीं है कि आप देखिए ट्यूमर का तो आपको इलाज कराना होगा, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो इलाज के बावजूद भी फैलते हैं, अगर आप नहीं कराएंगे तब तो निश्चय ही हार्मफुल इफेक्ट आएगा ही आएगा, बट कराएंगे तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और थोड़ा लाइफ प्रोलॉन्ग हो उसकी।
0: जी, और हमारे साथ हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी मेरठ से।
0: जी जी,
2: और मेरा पूछना है कि क्या डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और एगोनाइज पेन ये ब्रेन ट्यूमर के प्राथमिक लक्षण है या मिथक है?
1: देखिए फिर मैं बोलूंगा कि ट्यूमर के लक्षण जनरलाइज नहीं कर सकते, ट्यूमर के लक्षण उस डिपेंड करता है कि किस हिस्से का आपको ट्यूमर हो सकता है। डिमेंशिया जनरली ट्यूमर्स में नहीं देखा जाता है, ये अगर ओल्ड पेशेंट्स में हो रहा है तो ये सिनाइल डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, तो ये भी आपको डॉक्टर ही देख के बता पाएगा कि डिमेंशिया का क्या कारण हो सकते हैं।
0: तो कारण भी जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा, सिम्टम्स भी बहुत क्लियर नहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम चलें, थोड़ा सा हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, जैसे आपने बताया कि अगर बहुत बार उल्टी भी आ रही है तो क्या कोई खास समय होता है जिस समय ये दर्द और उल्टी ज्यादा होती है जो ये सिग्नल दे कि ब्रेन ट्यूमर की तरफ कुछ शक किया जा सकता है?
1: देखिए जो अपन बोलते हैं कि आदमी जब सो के सुबह उठता है उसको उल्टी होती है, तो वो एक, मैं ये नहीं बोलूंगा प्लीज इसको दिमाग में मत बैठाइए कि सुबह सो के उठ के उल्टी हो रही तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, बट देखा जाता है कि जनरली ट्यूमर्स में होती है ऐसी उल्टी है। और उल्टियों से हेडेक में रिलीफ होता है, ये नॉर्मल माइग्रेन में भी देखा जाता है, ब्रेन ट्यूमर में भी देखा जाता है, बट इसके साथ साथ अगर ऑल भी एसोसिएटेड सिम्टम आ रहे हैं तब आपको सचेत होने की आवश्यकता है।
0: जी, और किस तरह के डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह के पेशेंट के साथ क्या प्रोग्नोसिस बनता है?
1: देखिए प्रोग्नोसिस तो पेशेंट का डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्यूमर है उसको और किस हिस्से का ट्यूमर है। अगर हम जैसे आप MRI कराते हैं, ट्यूमर निकलता है, आपकी सर्जरी होती है, फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, बायोप्सी की क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद उसमें क्या और चिकित्सा संभव है, क्या हम रेडिएशन दे सकते हैं, क्या हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे क्या प्रोग्नोसिस रहेगा।
0: जी, तो आज जितने प्रश्न आए हैं हमने कोशिश की है शामिल करने की, और हमारे भी बहुत सारे

0: आज प्रश्न थे वो भी हमने शामिल किए हैं, और कुछ प्रश्न डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं जो कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, इस स्कोप पे नहीं आते हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि आगे भी अगर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले विषय सुन लें और हमारे विशेषज्ञ के बारे में जान लें और फिर उस पे प्रश्न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता होते हैं जो लाइन में होते हैं और अपने प्रश्नों को जानना चाहते हैं, उनके सवाल जानना चाहते हैं। आज बात करी हमने मस्तिष्क ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर की, हमारे साथ रहे डॉक्टर राहुल वार्ष ने। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं को, आपका कोई संदेश देना चाहें।
1: मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखिए ट्यूमर होना है ठीक है, ये मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, बट ट्यूमर का इलाज कराना आपके कंट्रोल में है। ट्यूमर होने से घबराइए नहीं, इसका इलाज जरूर कराइए। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं नहीं बचूंगा। बहुत से ट्यूमर ऐसे होते हैं, इलाज कराएंगे आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो डॉक्टर के पास जाइए और इलाज जरूर कराइए, बी पॉजिटिव।
0: बिल्कुल बी पॉजिटिव और इलाज जरूर कराना है, उस चीज को समझना है और डॉक्टर के पास पहुंचना है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए कि डॉक्टर साहब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप जब सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो आपको सब चीजें डॉक्टर समझा देंगे, लेकिन पहुंचिए जरूर, उसको इग्नोर मत करिए। तो इस कोशिश इस में हम सफल हुए हैं कि नहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमें जरूर बताइए। हमारे ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हैं इस कार्यक्रम का फीडबैक और हमारे अन्य कार्यक्रमों का फीडबैक, और इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, क्या विषय आप चाहते हैं कि हम आगे लें, वो भी आप हमें बता सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय को, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपने समय निकाला है इस कार्यक्रम के लिए, आप यहां आए हैं, हमारे श्रोताओं की इतने सारी समस्याओं का समाधान आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को।
0: और इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम को समेटने की और खत्म करने की, फिनिश करने की इजाजत दीजिए आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को, पर जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नया एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको यही मिले, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम रेनबो पर ये कार्यक्रम।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष के विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसे कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सरकार ने चुनावी वायदों के अनुसार राज्य में विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू करने शुरू कर दिए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश, भाष्यम रामकृष्ण और चिंतकायला विजय ने आज अमरावती में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। तीनों उम्मीदवारों ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी आर वनीता रानी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल और प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायुसेना केंद्रों, नेवातिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में अफगानिस्तान 112 रन ही बना सकी और भारत ने मैच जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे मानव सुथार को मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यहाँ और आप इस समय जिसकी वाणी सुन रहे हैं वो हूँ मैं, आपकी मस्त मस्त आरजे माला लेकर आ चुकी हूँ प्रोग्राम अल्फा जेन यूथ स्पीक्स। और आज का दिन है बेहद खास। बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज का दिन सच में बहुत खास है। अब देखो, आपको लग रहा है देखो कैसे कैसे पहेलियां बुझा रही हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली सच में आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आकाशवाणी के 90

0: साल पूरे हुए हैं आज, और ऐसे में जब 90 सालों का इतना लंबा इतिहास हो, इतनी लंबी विरासत हो, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस, कहानियां, स्ट्रगल्स और इतने सारे इनोवेशंस और नए नए कॉन्सेप्ट्स पर काम करने की बात हो और 90 सालों का ये सफर पूरा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी है आज हम सबको साथ, मैं ये भी कहूँगी कि हमको तो है ही है, साथ में आप लोगों को भी बहुत खुशी है क्योंकि आप हमेशा से हमारे साथ ही रहे हैं और हमारे हर एक प्रोग्राम को, हमारे हर एक दिन को, हर पल को, हर मोमेंट को आप खास बनाते रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज का दिन आकाशवाणी के 90 सालों को पूरा करता हुआ एक स्पेशल डे है और स्पेशल डे पर स्पेशल शो होना चाहिए। यूथ स्पीक्स पर आज हमारे साथ हैं आज की स्पेशल गेस्ट, और ये स्पेशल गेस्ट कितनी ज़्यादा स्पेशल हैं और कितनी इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं इसका आपको अंदाज़ा इस पूरे प्रोग्राम के दौरान लगता रहेगा। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं अपनी आज की इस खास गेस्ट को। हाय समृद्धि, वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू मैम।
0: अच्छा समृद्धि, इतनी खूबसूरत हो तुम और साथ ही साथ आज इतनी खूबसूरत दिन पर आई भी हो, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो कैसे अपने एक्साइटमेंट को बयां करोगी?
1: मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे स्पेशल डे का हिस्सा बनने का मौका मिला और मैं आप सबसे आज बात कर पाऊंगी और अपने थॉट्स आपके सामने बता पाऊंगी।
0: डेफिनेटली, वी ऑल आर सो एक्साइटेड। अच्छा ये बताओ, जब मैं शो स्टार्ट कर रही थी तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ में थोड़ी सी नर्वस थी, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मतलब एक्साइटमेंट तो ठीक है पर थोड़ा नर्वस होना भी ज़रूरी है? अरे रेडियो पर हम मस्ती से आराम से बात करते हैं, मज़ेदार बातें।
1: अच्छा ये बहुत बढ़िया, मेरी थोड़ी धीरे धीरे नर्वसनेस कम हो रही है आपसे बात करते हुए।
0: क्या बात है। देखिए अदिति की बात अगर हम करें, पिछले हफ्ते आपने अदिति को सुना, आज इस हफ्ते आप समृद्धि को सुन रहे हैं और हर हफ्ते आप यूथ स्पीक्स पर किसी न किसी स्पेशल गेस्ट को हमारे साथ जरूर सुनते हैं और जानते हैं कि युवाओं को जो मंच प्रदान करता है हमारा ये शो जिसका नाम है अल्फा जेन, उसमें कितना मौका मिलता है युवाओं को अपनी बातें सामने रखने का और कितना अच्छा मौका होता है सभी लोगों का ये जानने का कि युवा आज के समय में अलग अलग चीजों के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन गाना जो मुझे और समृद्धि दोनों को बहुत पसंद है, इसे एंजॉय करते हैं और फिर आते हैं वापस।

0: अगर हम पुराने जमाने से आज के जमाने को कंपेयर करते हैं तो देन ऑफ कोर्स हमें लगता है कि आज की डेट में तो वाकई बादल पे पांव है। इतना जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बदल चुकी है और आज के समय में हर एक चीज का सोल्यूशन हमें टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं दाएं बाएं मिल ही जाता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ स्पीक्स अल्फा जेन के तहत। इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर सोमवार को और आज हमारे साथ है समृद्धि गोयल साथ में। और समृद्धि, आपसे जानना चाहेंगे, देखो अगर हम आज की जेनरेशन की बात करें, आप जेन जी हैं, तो ऐसे में आपको क्या फर्क लगता है तब से अब में, जब स्टार्ट हुआ था आकाशवाणी तब से अब में कितना फर्क है और ये फर्क कितना पॉजिटिव है?
1: अब तो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गई है सब चीज़ों की। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम तुरंत इंटरनेट खोल लेते हैं और फिर उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग तब इन्फॉर्मेशन, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद सोर्स ही हमारे पास रेडियो था। 90 साल पहले जब आकाशवाणी स्टार्ट हुआ उस दौर में रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, सीखने के लिए, दुनिया से जुड़े रहने का सबसे भरोसेमंद माध्यम था। लोग प्रेजेंटर्स को देख भी नहीं पाते थे लेकिन उनकी आवाज से पहचान जाते थे और उनका इंतजार भी करते थे। शायद यही वजह थी कि रेडियो इतनी जल्दी लोगों के दिलों का हिस्सा बन गया।
0: या यू आर सो लवली, मतलब जब तुमने कहा ना कि लोग देख भी नहीं पाते थे और सिर्फ आवाजों से पहचान जाते थे, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैंने आकाशवाणी में अपना करियर स्टार्ट किया था उस समय तक भी ऐसा ही था। अब तो खैर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन है कि लोग देख भी पाते हैं, यहाँ नहीं देख पाते लेकिन वहाँ डेफिनेटली हमें देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा हम जो रेडियो पे शो करते हैं तो हम कैसे दिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये उस ज़माने में इतना ज़्यादा छुपी हुई चीज़ थी कि लोग वाकई आवाज़ सुन के इतने ज़्यादा दीवाने हो जाते थे और उन्हें लगता था कि यार ये कौन है और इनसे हम मिलना चाहेंगे। तो वो दौर मैंने देखा है, वो जमाना मैंने देखा है और उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली लगता है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों से जुड़ने का ज्यादा अच्छा माध्यम आ चुका है, हम लोगों से जुड़ते हैं। लेकिन जब आप बाहर से देखते हो रेडियो के प्रेजेंटर्स, जब सोशल मीडिया पर आपको दिखते हैं तो आपको कैसी फीलिंग होती है?
1: वो फील मतलब बहुत ऐसे फैसिनेटिंग लगता है कि अब तक तो हम सिर्फ उनको रेडियो पे सुनते थे या पॉडकास्ट, अब ज़्यादा पॉडकास्ट चल गए हैं, हमारी जनरेशन रील्स और पॉडकास्ट ज़्यादा सुनती है। तो जब इन सब लोगों को हम पहले सिर्फ आवाज़ें सुन पाते थे और फिर एकदम से हम उन्हें सामने देखते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि वो हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनसे मिल पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है वो।
0: क्या बात है, आज मैं हंस के पागल हो जाऊंगी, कुछ तो हो जाएगा मुझे। चलो एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग प्ले कर रही हूँ अभी, इंजॉय कीजिए इस गाने को सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और इस शो को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ है समृद्धि गोयल। मनवा लाइक्स टू फ्लाई, सो आई वुड लाइक यू टू फ्लाई। One more time.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: चुका है 4:20 और ठीक 10 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला। प्रोग्राम जो आप अभी इंजॉय कर रहे हैं वो है आपका फेवरेट वाला अल्फा जिन यूथ स्पीक्स, और आज हमारे साथ है युवाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए समृद्धि गोयल। समृद्धि, आप जो बातें कर रही हो ना, सीरियसली मुझे उस जमाने में लेके जा रहा है जब वाकई इमोशंस जो है ना वो बिल्कुल पीक पर आ चुके हैं। मतलब मुझे कई बार ऐसा एहसास हो रहा है कि आंखों में ना आंसू, थोड़ी सी नमी सी आ गई, आंसू टपकने वाले। मुझे क्या क्या बता रही हूँ
11: मैंने ना अक्सर ही अपने घर में अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को देखा है रेडियो के बारे में बहुत बातें करते हुए। एक अलग ही स्माइल आ जाती है उनके फेस पे जब वो रेडियो के बारे में बताते हैं, क्योंकि रेडियो उस टाइम में सिर्फ एक मशीन नहीं थी बल्कि हर घर का हिस्सा था। आकाशवाणी हर सुबह की शुरुआत भक्ति संगीत से होती थी, कभी समाचार, कभी गीत संगीत, कभी कोई नाटक या विशेष कार्यक्रम, जयमाला, हवा महल, बिनाका, गीतमाला और भी बहुत सारे नाम मैंने अपने दादा दादी के मुंह से सुने हैं। उस समय लोग अपने पसंदीदा गाने को सुनने के लिए पोस्ट कार्ड लिखते थे, इनलैंड लेटर लिखते थे, लेकिन अब आप तो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर दीजिए और आपकी फरमाइश जो है आकाशवाणी तक बहुत आराम से पहुंच जाती है।
10: पता है मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो बात की अब मुझे कनेक्ट करना है। पता है अब इससे मेरी उम्र का लोगों को पता लगता है तो लगे, लेकिन मैंने वो दौर देखा है जब मुझे पोस्ट कार्ड्स आते थे। हाँ सच में पोस्ट कार्ड्स आते थे और सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगता था। और मैंने कहा ना कि तुम इतनी इमोशनल बातें कर रही हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना जब हम अपनी लाइफ का कोई एक लेवल अचीव कर लेते हैं, जैसे मैरिज के 25 इयर्स हो गए, 50 इयर्स हो गए, या आपकी एज जो है वो 75 इयर्स हो गई, तो उस टाइम पर जब प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स, फैमिली फंक्शंस वगैरह, तो वहाँ पर ना ऐसे वीडियोज़ दिखाए जाते हैं या ऐसी कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं जिसमें उस पुराने दौर को याद करते हुए आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं और फिर आप उस दौर में खो जाते हैं और आप इतने इमोशनल हो जाते हैं एंड यू फील लाइक कि यार यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत बहुत बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, वो फीलिंग आज तुम मुझे याद दिला रही हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो इस बात से जरूर कनेक्ट हो पा रहे हैं। समृद्धि, आज तुमने बहुत स्पेशल बना दिया इशू, 90 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ आकाशवाणी एंड वी आर हैविंग समृद्धि गोयल विद अस। थैंक यू सो मच यार, ऐसी और बातें करती रहो और मैं बहुत ही खूबसूरत गाने जो है ना, जो मुझे और समृद्धि दोनों को पसंद है, वो प्ले करती जा रही हूँ। सो एंजॉय दिस वन।

0: हेलो नमस्कार सभी को, आप सुन रहे हैं अल्फा जेन और मैं हूँ समृद्धि गोयल आप लोगों के साथ। अगर रेडियो की बात हो और संगीत की बात ना हो तो मुझे लगता है थोड़ा अधूरा ही लगेगा, क्योंकि संगीत का रेडियो में हिस्सा हमेशा से इतना खास रहा है ना। लेकिन एक दौर ऐसा था जब रेडियो हमें सरप्राइज कर देता था, अचानक कोई भी गाना बज जाता था और जैसे पूरा मूड ही बदल जाता था। और तो और कोई कोई गाना ऐसा होता था जो ऐसा लगता था मानो अभी मेरे दिमाग में चल रहा था और उसी फीलिंग से बहुत रिलेटेड एकदम ही गाना बज गया, पूरा मूड ही बदल देता था। तो इसी यही वजह है कि कुछ गाने सुनते ही लोग अपने बचपन या किसी खास याद में पहुंच जाते हैं। शास्त्रीय संगीत हो या कर्नाटक संगीत हो या सुगम संगीत हो और यहाँ तक कि फिल्मी गीतों तक, आकाशवाणी ने भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
1: बिल्कुल सही कहा समृद्धि तुमने। और जिस तरह से अब मैं बताती हूँ, अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज हम दो अलग अलग जेनरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं अगर बात करूँ, मुझे वो दौर याद है जब अगर आप उदास हो ना तो आप उसी मूड के गाने प्ले करना शुरू कर दोगे और आप और उदास हो जाओगे, और अगर आप खुश हो तो आप ऐसे मतलब भांगड़ा टाइप्स गाने और ऐसे हिप हॉप नंबर्स और पार्टी सॉन्ग्स प्ले करोगे और सुनोगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ आज तो बस कुछ हो ही जाएगा, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। क्या आज के दौर में भी ऐसा करते हैं यूथ? क्या उनको गानों से वाकई फर्क पड़ता है?
0: हाँ, जैसे आप अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे, अब उन्होंने बहुत ऐसे बहुत फास्ट नंबर्स डांसिंग म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले सारी बॉलीवुड फिल्मों में बहुत इमोशनल और रोमांटिक गाने बजाते बनाते थे वो, तो उनसे सारे जो जेंजी हैं वो बहुत रिलेट कर पाते हैं ऐसे ब्रेकअप के टाइम पे या फिर कुछ भी, तो बहुत इमोशनल गाने हम भी सुनते हैं जब हम डाउन फील कर रहे होते हैं, और फिर जब पार्टी हो, बर्थडे हो, कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, एग्जाम्स खत्म हो गए हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, तब हम भी बहुत बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड के लेटेस्ट गाने, धुरंधर के, रॉ के, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हैं।
1: यानी कि जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, जेंजीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर संगीत के बारे में बात की जाए तो आज भी आपकी फीलिंग्स को पीक पर ले जाने के लिए और अपने दिन को खुशनुमा बनाने के लिए या किसी पर्टिकुलर फीलिंग में और खो जाने के लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल आज भी होता है, और आकाशवाणी इसमें आपका हमेशा से साथ देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। 90 साल हमारे पूरे हुए हैं और आज का ये स्पेशल शो डेडिकेट हमने किया है अल्फा जेन का आकाशवाणी के 90 सालों में। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो आप भी तो हमें कुछ कह सकते हैं ना, मैसेज लिख सकते हैं, तो हमें जरूर मैसेज लिखकर बताइए 9868107070 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और साथ में है
0: समृद्धि गोयल।
1: ये

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: आकाशवाणी।
1: हाय, मैं हूँ समृद्धि गोयल और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन।
2: और समृद्धि, ये तो बताओ कुछ अपने बारे में। हम तो मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपके बारे में बात करें तो कुछ बताओ।
1: मैं अभी बीटेक की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं सेकेंड ईयर में जा रही हूँ इस साल।
2: और
1: मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है।
2: तो अगर क्रिकेट की तुमने बात करी है, तो क्रिकेट का जो संबंध है वो सिर्फ तुमसे ही नहीं कनेक्ट होता है, वो भारत की हर एक जनता का कनेक्ट होता है आकाशवाणी के साथ। कैसे होता है तुम्हें पता होगा पक्का।
1: हाँ जी, तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना भारत की कोई कॉन्वर्सेशन पूरी ही नहीं होती, और वो है

0: हमारा प्यारा क्रिकेट. आज हम भले ही मैचेस HD क्वालिटी में देख लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब करोड़ों लोग पूरा मैच सिर्फ सुनते थे और उतने ही एक्साइटेड होते थे जितने आज हम होते हैं. क्यों? क्योंकि कमेंट्री एक कला थी. कमेंटेटर्स केवल मैच नहीं बताते थे, वो पूरी पिक्चर बना देते थे लोगों के दिमाग में. और रेडियो आपको पिक्चर नहीं देता, बल्कि पिक्चर बनाने का मौका देता है, और यही उसकी यूनिक बात है. कई लोगों के लिए क्रिकेट कमेंट्री सिर्फ खेल नहीं थी, बल्कि इमोशन थी. और इस पूरी जर्नी में आकाशवाणी ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई. सच माने ना तो दोस्तों, तो आकाशवाणी की पहचान सिर्फ उसकी आवाज नहीं है, उसके कार्यक्रम भी है. युवाओं के लिए युवा वाणी जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जहां पर युवा लोग अपनी बात रख सकते थे. कहानी, नाटक, चर्चा और संगीत कार्यक्रम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए. और खास बात यह भी थी कि देश की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को, सबको आकाशवाणी पर बराबर जगह मिली. और यही वजह है कि इतने सालों बाद भी, 90 सालों बाद भी, लोग आज भी इन कार्यक्रमों को इतने अच्छे से याद रखते हैं.
1: मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समृद्धि कि तुम्हारी और मेरी एज एक ही है? मतलब जिस तरह से तुम उस जमाने की बात कर रही हो. खैर, कमेंट्री की अगर हम बात करें तो वो आज भी लोग सुनते हैं आकाशवाणी पर. और जिस तरह से बताया आपने कि पहले किस तरह से लोग सुनते थे, मॉर्निंग में रेडियो चालू हो जाता था.
0: हाँ, हाँ.
1: और उसके बाद दिन भर उनको पता थे, प्रोग्राम्स भी पता थे, युवा वाणी में भी प्रोग्राम सुनते थे.
0: हाँ.
1: कितने सारे युवाओं को मंच मिलता था, वो प्रोग्राम्स करते थे.
0: हाँ.
1: मन भावन करके प्रोग्राम कई लोगों ने किए हुए हैं.
0: हाँ.
1: और इस तरह से लोग जुड़े हुए थे. तो मतलब तुम जैसे बता रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरे सामने हुआ है, तो तुम्हारी और मेरी एज सेम ही है. कांग्रेचुलेशंस टू. लेकिन बहुत सारे लोग, ये वाकई बात बिल्कुल सच है कि जब हम क्रिकेट को रेडियो पर सुनते हैं ना, तो हम एक क्रिकेटर का पूरा चेहरा जो है वो अपनी आंखों में बना लेते हैं. एक इमेज जो है वो हमारे दिमाग में छप जाती है. और ऑफ कोर्स फिर हमको ये लगता है कि हाँ, ये क्रिकेटर हमारा फेवरेट है, या इस क्रिकेटर ने अगर छक्का मारा है या चौका मारा है तो बॉल कैसे गई होगी, क्या हुआ होगा. वो एक्साइटमेंट जो देखने से ज्यादा सुनने में होता है, वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन. मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला. और ऐसी और भी बहुत सारी मस्त बातों के लिए हमारे साथ है समृद्धि आज स्टूडियो में. बने रहिए हमारे साथ.

0: ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा ने कभी कहा हो, डांटा हो किसी बात के लिए और तुम्हें डांट के भगा दिया हो? कभी ऐसा हुआ है?
1: हमेशा तो बहुत होता है, मैं तो बहुत शैतान हूँ घर में, मुझे तो सारे टाइम ही डांट पड़ती रहती है।
0: किस बात पे भाई?
1: फोन ज्यादा चला रही है या सो ज्यादा रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, आजकल तो इसी सब पे चल रही है। और अभी हमारा समर ब्रेक चल रहा है तो अभी भी इधर उधर मैं घूमती रहती हूँ घर में, तो उस पर कहते रहते हैं कि हमारे साथ काम करवाओ और ये सब।
0: तुम्हें बुरा लगता है?
1: हाँ मतलब बुरा थोड़ा तो लगता ही है कि भाई मुझे चिल करने दो, मैं घर में हुआ, मुझे पेपर दिया मैंने, मुझे चिल करने दो।
0: और जब कहते हैं कि भाई अभी तुम्हें समर ब्रेक्स मिली हुई है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, फ्री टाइम है, तो थोड़ी हमारी मदद करवा दो, तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या बात बोल दी, ये तो मेरा कोई काम ही नहीं है, ये मेरे को क्यों कह रहे हैं करने?
1: हाँ आप करो अपना काम, अच्छा? आपका है, मैं क्यों करवाऊँ? लेकिन वही फिर करना पड़ता है, वरना फिर और ज्यादा डांट पड़ती है।
0: ओके, तो अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, क्योंकि आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो जैसे आपने कहा कि फोन देखते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ फोन, तो इसलिए भी डांट पड़ती है। तो अगर हम आपकी टेक्नोलॉजी वाली जर्नी के बारे में बात करें, तो ये जर्नी कैसे आपके रही, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुंची है?
1: टेक्नोलॉजी तो हमेशा से ही बदलती रही है। जब मैं छोटी थी तब रेडियो बहुत रेलेवेंट था, रेडियो से फिर टेलीविजन हुआ, टेलीविजन से इंटरनेट हुआ, अब इंटरनेट से हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी ने अपना मकसद नहीं बदला। आज भी आकाशवाणी का मकसद है लोगों तक पहुंचना, उन्हें जोड़ना और उनका भरोसा जीतना। यकीन मानिए दोस्तों, रेडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोगों के साथ दिल से दिल तक का कनेक्शन बनाना, जैसा कि आज तक 90 साल हो गए और आज भी FM रेनबो यही कर रहा है, और आज इस दिल से दिल तक के रिश्ते का हिस्सा बन गई हूँ मैं।
0: अरे वाह क्या बात है, देखो कैसे कनेक्ट कर रही लड़की है। ये चेयर ना बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली है, मैं गेस्ट चेयर पर और ये RJ चेयर। अच्छा समृद्धि, लेकिन अगर हम आज के युवाओं के बारे में बात करें, तो रेडियो को लेकर उनके मन में किस तरह की फीलिंग है, क्या किस तरह से वो अपने आप को रेडियो से कनेक्ट करते हैं या नहीं कनेक्ट करते हैं, क्या ऐसा भी है?
1: रेडियो डेफिनेटली आजकल हमारी वाली जनरेशन तो बहुत कम ही सुनती है, लेकिन हम रेडियो को दूसरी फॉर्म में सुनते हैं, हम सुनते हैं पॉडकास्ट में।
0: अच्छा।
1: लेकिन दोनों की ताकत एक ही है, आवाज के जरिए कनेक्शन बनाना, किसी की कहानी सुनना, किसी के विचार सुनना और कुछ देर के लिए उस बातचीत का हिस्सा बन जाना। शायद यही वजह है कि ऑडियो कंटेंट तो हमेशा से पॉपुलर है, बचपन में मेरे रेडियो चलता था, अब पॉडकास्ट चलते हैं, लेकिन आज भी जरूरी इन्फो तो रेडियो से ही मिलती है, पॉडकास्ट तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे सेंसिबल चीजें करनी हो तो हम रेडियो के पास आ जाते हैं वापस।
0: क्या बात है, तो देखिए अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है, उसके लिए आकाशवाणी के साथ आपका जुड़ाव हमेशा से रहा है, आज भी और आगे भी रहेगा, ये हमें पता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम AlphaGen और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल। आज के दिन 8 जून के दिन पूरे हो चुके हैं आकाशवाणी के 90 साल, इसीलिए हम सबको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अभी एक बहुत ही बेहतरीन गाना इस सेलिब्रेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और फिर वापस आती हूँ समृद्धि के साथ कुछ और खास बातें करने के लिए।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: जी हाँ, समय हो चुका है 4:50 और ठीक 34 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और मेरे साथ में है समृद्धि गोयल, आज की हमारी यूथ गेस्ट। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन यूथ स्पीक्स, और ऐसे में युवाओं की आवाज को मंच देने का काम जब ये प्रोग्राम करता है तो बहुत सारे युवा हमसे जुड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे जो युवा लिसनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने मन की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तो अभी समृद्धि है, तो हम समृद्धि से जानना चाहेंगे युवाओं के मन की बात। समृद्धि, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी क्योंकि हमने लगातार आकाशवाणी के बारे में बात की, हम उस जमाने में उस दौर के बारे में भी हमने बात की जब आकाशवाणी को ही लोग सुनते थे और कोई माध्यम था नहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और आज की डेट में जब बहुत सारे साधन हो गए हैं, ऐसे में भी आकाशवाणी को किस तरह से और किस रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया है और किस तरह उसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया, हमने इस बारे में भी बात की। बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो आकाशवाणी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब आज आप हमारे साथ हो, आकाशवाणी का हिस्सा हो, एफएम रेनबो पर हो, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको कोई 3 टिप्स देनी हो, अब आपका जो भी एज ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हमें सुन रहे होंगे वो ये जरूर चाहेंगे कि समृद्धि आज पहुंची, अगली बार हमारा नंबर आना चाहिए तो समृद्धि की तरफ से उनके लिए क्या टिप है, कोई 3 टिप्स?
1: आप बहुत क्रिएटिव होने चाहिए कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर ले। फिर दूसरी चीज की बात करना आना चाहिए कि फ्लो में, यहाँ पर हम इतना बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं तो आप बीच में अपने थॉट्स ला पाएं बहुत आराम से। और तीसरी चीज तो यही, कॉन्फिडेंस हो आप।
0: बहुत कॉन्फिडेंटली कहा इसने कि मतलब ना, आप कॉन्फिडेंट आप होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हम बोल कुछ रहे होते हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ और जाता है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसा होता है हमारे साथ।
1: हाँ, हाँ।
0: और कई बार लोगों को लगता है कि ये कितना मतलब पक पक पक पक पक पक बोलते चले जाते हैं एंड विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी फंबल। एक्चुअली फंबल्स होते हैं डियर, फंबल्स होते हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से घुमाते हैं कि सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं, और वहां पर काम आता है आपका कॉन्फिडेंस। तो जो 3 चीजें आपने कही हैं, आई टोटली अग्री विद दैट, क्योंकि ये 3 चीजें अगर आपके अंदर हैं, लोग कहते हैं हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हम कैसे रेडियो पे आएंगे, हमारी तो आवाज अच्छी नहीं लगती हमें सुनने में, मुझे भी अच्छी नहीं लगती मेरी आवाज, लेकिन समृद्धि ने कहा कि आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती, मुझे समृद्धि की आवाज बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा मत सोचिए कि आवाज का उस तरह से कोई रोल है कि आप आ सकते हैं कहीं या नहीं आ सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और वो जज्बा भी होना चाहिए कि करना है तो करना है और करके ही रहेंगे। और आप आज की अल्फा जेनरेशन है, आप जो चाहेंगे वो जरूर कर पाएंगे, वो जरूर कर सकते हैं। तो बस इस जज्बे के साथ कि आपको जो काम करना है वो आप करके रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाइए, और यकीन मानिए कोई रोक नहीं सकता आपको।

0: भी मैं भी सोच रहे हैं हम दोनों मिलके कि अब मैं क्या करूं। समय हो चुका है 4:54 और ये समय हमें कह रहा है कि अल्फा जैन का समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। लेकिन चलते चलते समृद्धि क्या कहना चाहती हो?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस पूरे प्रोग्राम का, आज 90 साल 90th बर्थडे है आकाशवाणी का और मैं इसका पार्ट बन पाई। तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और इस जश्न का हिस्सा बनने का मौका दिया। साथ ही उन सभी लोगों को मेरा नमन जिनके मेहनत और जुनून ने आकाशवाणी को आज इस मुकाम तक पहुँचाया। और चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आकाशवाणी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये एक स्तंभ है, ये एक पिलर है। और अभी तो 90 साल पूरे हुए हैं, शतक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उम्मीद करती हूँ आकाशवाणी का ये मनोरंजन और जानकारी से भरा सफर यूं ही जारी रहेगा और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन यूं ही करता रहेगा।
0: और जैसे कि समृद्धि ने कहा कि अभी तो 90 साल ही हुए हैं, यानी कि ये बिल्कुल वही डायलॉग है, कुछ अलग अंदाज में उन्होंने कहा, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पिक्चर बाकी है, यूं ही चलती रहेगी आपके साथ, इसी तरह से जुड़ाव आपको फील करवाती रहेगी, समय समय पर आपका नेतृत्व करती रहेगी और आपके समस्याओं का समाधान जो है वो आपके लिए लेकर आती रहेगी। फिलहाल आज अल्फा जेन में मुझे यानी मस्त मस्त आरजे माला को दीजिए इजाजत, साथ में
1: समृद्धि गोयल को भी
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार, जुड़ते हैं आपके साथ बहुत जल्द और फिर आपके साथ जब जुड़ेंगे तो फिर और बहुत सारी ढेर सारी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे गाने आपको सुनवाएंगे कि आप पूरी तरह से एंटरटेन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, अलविदा।
2: मोरे अंगना में लगवाए कुएं से पानी ना भरवाए, कुएं से पानी ना भरवाए।

0: आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं शहसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
2: थैंक यू खान साहब। Namaskar and a very good evening to all our dear listeners tuned in to Akashvani for a live commentary of the prestigious and most honored Defence Ambassadors Ceremony 2026.
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
2: and the गणतंत्र मंडप Rashtrapati Bhavan packed to its capacity. We've just welcomed our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The audience is rising and now taking their seats. And as we were mentioning, that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into the national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassadors Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honour our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice, and there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies of the land.
1: रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन भारत के गणतंत्र मंडप में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
2: As we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our brave martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honor for them that their beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I'd mentioned, full and brimming with capacity and of course glittering to perfection from the main entrance, a red carpet leading right up to the beautiful ornate chair, the majestic chair where our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, shall sit and preside over the proceedings of this grand Defence Investiture Ceremony 2026. And right behind the chair is an imposing 5th century statue of Lord Buddha. Statue is a beauty, poetry in the stone, carved hundreds of years ago but still holding on to its grandeur. And right above that is a burgundy canopy overlooking the entire packed circular hall. And as we were talking about the Gallantry Awards. There are going to be 51 Gallantry Awards which shall be presented today, comprising 5 Kirti Chakra, 28 Shaurya Chakra, 12 Veer Chakra, out of which 1 Shaurya Chakra posthumously, 3 Veer Chakra posthumously and 2 Kirti Chakra posthumously. It is a poignant moment. The Gallantry Awards of India stand as a testimony to the valor, bravado and indomitable spirit of our brave men and women in uniform and our soldiers coming from the tri-services, the Army, the Air Force and the Navy, as well as from the police forces of India in the khaki. Olive, blue, white khaki. The uniform they donned, the vow they took, commitment to the nation to safeguard the frontiers always and ever. And a grand fanfare now, welcoming our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu.
1: And now, Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Adaranji Suchana, Unke Suraksha Guard, Unke Aage Chalte Hue, Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, Is Vakt Aa Chuki Hai, Rashtrapati Bhavan Ke Gartan. सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का खड़े होकर स्वागत किया और साथ ही माननीय राष्ट्रपति के स्वागत में भी सभी लोग खड़े हो गए। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है।

0: रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन, आखिरी व्यक्ति तक।

0: बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
1: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
0: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Defence Investiture Ceremony is underway at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. President Draupadi Murmu is presiding over the ceremony. During this prestigious event, the President conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces, and State and Union Territory Police. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat, and Rameshwar Durg Deshmukh were awarded Shauri Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. West Bengal has become the 36th state and union territory in the country to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The scheme provides health cover of up to 5,00,000 rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and Government of West Bengal signed an MOU in New Delhi today for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. The Trinamool Congress or TMC led by Mamata Banerjee today moved the Calcutta High Court challenging the decision of West Bengal Assembly Speaker to recognize Rituprat Banerjee as the leader of the opposition in the Legislative Assembly. According to reports, TMC has contended that Speaker's decision to appoint Rituprat Banerjee as leader of the opposition is contrary to established parliamentary norms and procedures. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia. In a statement, the External Affairs Ministry said that the

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তে সময়ৰ পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰৱাচিকা সাধনা শৰ্মা। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सीबीएसई बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता संदर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलं अफगानिस्तान दलं एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयं अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणम्, स्वच्छ भारत अभियानम्, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्थितस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेऽपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्यां राष्ट्रिय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायां आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अपराह्णे नवदेहली नगरे भारतसभा अभवत्। अस्यां सभायां विपक्षस्य विभिन्नाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी इत्यस्य वरिष्ठः नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा ममता बनर्जी, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सूले च आसन। सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् संबोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे उक्तवान् यत् सभायां 25 राजनैतिक दलानि उपस्थितानि आसन्। सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता, सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः।
3: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: भारत देशः पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तवान्। विदेश मंत्रालयेन उक्तं यत् एते घटनाक्रमाः अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य कृते अत्यन्तं चिन्ताजनकाः सन्ति। शिला तैल प्राकृतिक इंधन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालयेन उक्तं यत् पश्चिम एशियायां वर्तमान परिस्थितेः अपि देशे शिला रस तैलस्य गृह्य इंधनस्य एलपीजी गैस इत्यस्य तथा प्राकृतिक इंधनस्य आपूर्तिः स्थिरा वर्तते। मंत्रालयस्य अनुसारेण पेट्रोल, शिला तैल, डीजल, पीड ज्वाल तैल, एलपीजी द्रवीकृत शिला तैल इंधन इत्यादीनां पर्याप्तः भण्डारः देशे उपलब्धः वर्तते। ईरान देशे भारतीय दूतावासस्य परामर्शः ईरान स्थितेन भारतीय दूतावासेन क्षेत्रे वर्तमान तनावपूर्ण स्थितेः कारणात् भारतीय नागरिकेभ्यः ईरान यात्रां परिहर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। तत्र वर्तमानाः भारतीय नागरिकाः उपलब्ध यान साधनैः देशत्यागं कर्तुम् अपि सूचिताः। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम् प्रसारयति भारतस्य

0: स्वरम् विश्वस्मिन् आकाशवाणी अद्य स्वस्य स्थापनायाः 90 वर्ष पूर्तिम् उत्साहेन आचरति। षड् त्रिंशत् उत्तर एकोनविंशति शततमस्य वर्षस्य जून मासस्य अष्टमे दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्तनं कृत्वा ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। स्वातन्त्र्योत्तर काले 55 उत्तर 91 शततमे वर्षे अस्याः नाम आकाशवाणी इति अभवत्। इदानीम् आकाशवाणी केन्द्राणि बहूनि सन्ति ये भारतस्य 98% जनसंख्यां यावत् प्रसारणं कुर्वन्ति। CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला महोदयः अद्य चंडीगढ़स्थे हरियाणा विधानसभा भवने CPA इंडिया रीजन जोन द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। सम्मेलनस्य विषयाः राष्ट्रनिर्माणे विधायकानां भूमिका विकसित भारत 44 47 उत्तर 2000 तथा कृत्रिम बुद्धेः उपयोगः इति अस्ति। श्वः प्रभृति प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानस्य 10 वर्ष प्रपूर्त्यवसरे राष्ट्रव्यापिनः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एष अभियानः 9 जून 16-2000 वर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रारब्धः। अस्य उद्देश्यं गर्भवतीनां महिलानां कृते निःशुल्कं गुणवत्तायुक्तं तथा प्रसवपूर्व स्वास्थ्यसेवानां प्रदानम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री JP Nadda 75 रूप्यकस्य स्मारकमुद्रां 5 रूप्यकस्य डाकपत्रं च प्रसारयिष्यति। विश्व महासागर दिवसस्य अवसरे पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जनान महासागर संरक्षणस्य समुद्री जीव रक्षणस्य च संकल्पं कर्तुं आहूतवान्। सः अवदत् यत् महासागराः विश्वस्य राष्ट्राणि परम्पराश्च परस्परं संयोजयन्ति। भावि परम्पराणां कृते स्वच्छ जलस्य स्वस्थ पर्यावरणस्य च संरक्षणार्थं सर्वैः सहकार्यं करणीयम् इति तेन उक्तम्। क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः। क्रिकेट क्रीडायां भारत दलं अफगानिस्तान दलं एकया एव पर्यायया 300+ धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं 5-दिवसीय विजयं अभिलेखितवत् इति वार्ताः।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বাতৰিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 kHz আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 kHz-ত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো পৰিণীতা গোস্বামীয়ে পৰিৱেশন কৰা বৰগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাটৰ তৰাণী মুৱাই থাই ক্লাবৰ 11গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি 10জনে পদক লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। অঞ্জুমণি ঠেঙাল, নিশিতা ঠেঙাল, ছায়ামণি শইকীয়া আৰু অশ্বিন হাজৰিকাই সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে আন 4গৰাকী খেলুৱৈয়ে ৰূপৰ আৰু 2জনে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত নিউ চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত টেষ্ট ক্ৰিকেটত ভাৰতে আফগানিস্তানক 1 ইনিংছ আৰু 300 ৰাণত পৰাস্ত কৰে। আফগানিস্তানে আজি তৃতীয় দিনৰ খেলত নিজৰ দ্বিতীয় ইনিংছত 35 অভাৰ আৰু 5টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 112 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। দলটোৱে 152 ৰাণত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই নিজৰ প্ৰথম ইনিংছ সামৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে কালি নিজৰ প্ৰথম ইনিংছৰ সামৰণিত 8 উইকেটৰ বিনিময়ত 564 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। দলৰ হৈ অধিনায়ক শুভমন গিলে 126 ৰাণ কৰাৰ লগতে KL ৰাহুলে 100 ৰাণ কৰে। ঋষভ পণ্ট আৰু সাই সুদৰ্শনে 81 ৰাণকৈ বৰঙণি আগবঢ়ায়। ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে 52 ৰাণ কৰি আউট নোহোৱাকৈ থাকে। আফগানিস্তানৰ প্ৰথম ইনিংছত মানৱ সুথাৰে সৰ্বাধিক 6টা উইকেট লোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় ইনিংছত ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে 4টা উইকেট দখল কৰে। অসম জুডো সন্থাৰ সভাপতি বাণীব্ৰত দাস জুডো ফেডাৰেশ্যন অব ইণ্ডিয়াৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। নতুন দিল্লীত আজি অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাত হোৱা নতুন সমিতি নিৰ্বাচনত শ্ৰীদাস বিজয়ী হয়। প্ৰসিদ্ধ ছেটাৰবাদক প্ৰদ্যুম্ন দাসৰ যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ এখন হস্পিতালত মৃত্যু হয়। শিলচৰত জন্ম লাভ কৰা প্ৰয়াত দাসে প্ৰথম সময়ছোৱাত নগাঁও আৰু পৰৱৰ্তী কালত দিল্লীত ছেটাৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ ছেটাৰবাদক পণ্ডিত ৰবিশংকৰৰ পৰা 5 বছৰ কাল ছেটাৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। আকাশবাণীৰ শিলচৰ কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী স্থায়ী শিল্পীৰূপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা প্ৰয়াত দাসে 1985 চনত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাৰ 12গৰাকী মন্ত্ৰীৰ মাজত দপ্তৰসমূহ বিতৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ লোকসেৱা ভৱনত আয়োজিত বৈঠকত কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজিসমূহৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা। ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টটেগ আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত 4গৰাকী অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন নাকচ। ৰাইমনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 5ম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী। আৰু ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত নিউ চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত টেষ্ট ক্ৰিকেটত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বৃহৎ জয়। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুনীশ শৰ্মা। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu today conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the defence investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat and Rameshar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. West Bengal has become the 36th state and union territory in the country to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The scheme provides health cover of up to 5,00,000 rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and Government of West Bengal signed a Memorandum of Understanding in New Delhi today for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. The Trinamool Congress TMC led by Mamata Banerjee today moved the Calcutta High Court challenging the decision of West Bengal Assembly Speaker to recognize Ritabrata Banerjee as the leader of the opposition in the Legislative Assembly. According to reports, TMC has contended that Speaker's decision to appoint Ritabrata Banerjee as leader of the opposition is contrary to established parliamentary norms and procedures. The petition is understood to seek judicial review of the Speaker's decision and recognition of the party's nominee S. Chattopadhyay for the post. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the Bhavya portal to accelerate development of 100 industrial parks across the country. Addressing the gathering in New Delhi, Mr. Goyal said the portal is aimed at creating integrated industrial ecosystems with multimodal connectivity, reliable utility systems, digital governance mechanisms, worker support infrastructure and sustainable development features.
4: to develop the industrial ecosystem and promote large-scale job creation through greater investments across the length and breadth of India.

0: get there. I think that one of the technological-driven aspects is the Namo Drone DV, which is not using modern technology as Chani mentioned about ENAM, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate fertilizers, pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector.
1: Yes.
0: And increasingly, the hands get costly because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large the problems that have been affecting of this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा आपके पास आते हैं जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी फिगर्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है उसमें इन्फ्लेशन कितना है उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था आज भी वही फैक्टर जरूर है लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और 2018 से पहले आप देख लीजिए बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा लेकिन 2018 में जब लिया आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने 8 साल हो गया सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है पहले तो 30% तक शुरुआत में थी क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है फार्मर को बेटर प्राइस मिला है उसमें कोई दो राय नहीं है कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है और मस्टर्ड का देख लीजिए अभी मस्टर्ड का सीजन है एमएसपी से ऊपर है चना का देख लीजिए चना ऊपर है व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस मार्केट प्राइस तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को
2: बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है काफी अच्छी बढ़ोतरी क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है फार्मर ने प्रोटेस्ट किया नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
3: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं होकर के स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
3: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स है उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2

0: लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनिए, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के DBT यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उसके खाते में पैसे हैं
0: जी।
1: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.4 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से में तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
0: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नियत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
0: तो पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
2: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट है उसकी तरफ।

0: शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर है इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी जरूरत
0: क्या है? ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में एक्स बटा 8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उसको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सीक्रेट रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए पहले भी एफपीओ बन

0: चलते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
0: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, right. And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, okay, so that the end product also becomes cheaper for the consumers and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ. আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত. প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা কেইটিমান সুৰীয়া গীত.

0: आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी

0: को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो सफर है इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है क्या इतना लोकप्रिय होता, कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी, इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसा आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के। तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी

0: जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो।
1: बिल्कुल।
0: इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स। विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया, यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है, या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसका क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे, क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, अमिला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी।

0: और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कंफर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
2: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 81 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
3: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
2: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
3: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे। इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों।

0: आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया, किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा, तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें, वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की भी बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुन।

0: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में हो यूनिवर्सिटी में हो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों जी हो, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सवैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैटर रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं, कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे। और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी। और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया। और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
3: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
3: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्यता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है, रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका

0: बताइए अपने नाम के साथ।
1: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारी बारियों को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय तंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
0: जी टंडन साहब,
2: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
3: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
0: और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
4: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
0: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
4: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए।
3: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब

0: जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो, कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
3: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामायिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए, वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: तो, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासकर समाचारों के प्रति,
3: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल,
3: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो रेडियो,
3: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
4: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
4: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है, आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए, क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
0: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
0: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने की, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
6: बहुत सुंदर।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
3: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
4: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
5: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1 करोड़ 43 लाख फैमिली बेनिफिटेड होगा, जमीन में काम

0: को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नेशनल स्कीम के टेली लोन नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी

0: कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज

0: आवाज में समाचार सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।